0: क्या जो जी जो देखा देखा है कुछ कह जी मैं इतना कुछ ही कह जी आई जी कह है ना उसका पीन उस देखा था हाथ में बा
1: ये कैन है ये मैं वही ना कौन मस्कट फाइव मिनट्स है बनाना ना शेफ विल डॉक्टर कहते हैं नस्कापे 15 किलोमीटर्स अवे तो कन्या साउथ ईस्ट पे नानी साउथ ईस्ट जी जी बस बेस्ट ना कौन मैं वही है जो ताना मैं हाउ शेफ विल एवं क्या कैसे ना कैन यू आई यू तो काइम उठ मैन मिंस कैटरिंग जी तो कौन न्यूज़ ने द मेगा मैं गावाचिक मैच का वुमेन्स कैटरिंग जूडी एंड डॉटी एक दिन का दादा दुया तो कुन्यान ने द जॉर्ज रिवर का इस पायात ना एक दिन का इस विशाम गयात सो एक दिन का इस पायात सो अगर न्याय तो स्टेव जी नॉना ने एक बाम बयात इन दो आफ टी गयात इन जी नो स्निस्कापी जी मैं इस्तांगे ने बात ने मैं तो जस Mam the next day na no je worry je di diet je di snacks ka even no snacks je boy na ta so in all we chido je bam thing to we sham gun even a snack da but god ask ya mo so dot in to check not so in je from you we je og na ta
0: I go to school. She must come in that math is to done on Sapsani or Agno. It's kind of school, yeah. They go to Spon. Tim Spon of Rio. Is that Jimmy Nunn and Jacob Dorsman?
2: Mm-hmm. Hey, I get Jim Moxano, as long as I meet Nanos, I Chitugan and Tuhunanos, Megods, Magay.
0: She took on the Jimmy Agnod, I'm sure I pick with Deno can get out at Ado. Pick at Jimmy Agnod, I'm sure when her. I couldn't even share with your guests. I'm a mummy to dog at. Pick with Deno, Gia Welch cook, and they get you penalty to dog at. I think you could you ask one to hear one to go with and they go to do which is for. Jim hate the mozak.
2: Es como poner a todos los que yo en la coge es una que se llama muy do
1: ya es como ayer por punto de cuando ayer Jim Snarsna no Green Nation de chito muy pego de we have not ayer five times we have not joined nette natashwan de chego de duk next year 2027 acá I got you to do and mysterious. I got in the cattle digging. I got you to do it. So, say, oh, we have not five times. Say, we have not done. Never can you do.
0: We the most guy at dance and house to dig it. Jiga got not no do. We always the most which man can help. So, we just him on the door and it.
2: Mm-hmm. Hey, I mio so au hey to diagnose nanako get it's ganes nano whaten how Quebec we mo Quebec so de we get Canada is psazi yeah mio so na to diagnose ke we get mio we jo kut ke we did same kut ji we jogging no can get out I which ke here a mami skudun madik mage it's good madik yeah than how tikkje nu de kage huoge wapti wikutskia den har du tog jag jo. I uppmatsungja i